तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख होवा तित कर अनहद वाजे।

रस नूं पीता है भावें वह बयान नहीं कर सके पर उपदेश उन्हां सारे दिता भी भाई ये असली रस है यही नाम दे रस दे नाल साडा पार उतारा होना दुनिया दे रस छड के इस रस दे नाल जुड़ जाओ ये सारिया ने समझाया चाहे वह भगत साहबाना ने रस पीता है नाम का चाहे भट्ट साहबाना ने नाम का रस पीता है तो चाहे गुरु साहबाना ने जिन्ना भी बंदगी का रस माण लिया वो कहिंदे ने कि सारिया के नालों जे कोई मिठा सुहावना आनंदमई सदीवी खुशी देन वाला रस है वह परमात्मा के नाम का रस है ते नाल ये भी दसिया दुनिया के रस जिन्हें असी चखते हैं ना जी उन्हां दे नाल तृप्ति नहीं हुंदी दुनिया के रसा की वो एक रस जिहड़ा पीवांगे दूजे रस वाले पासे ध्यान तीजे रस वाले पासे खिंडदा है पर जदों परमात्मा के नाम रस नूं चख लैंदा है जीव फिर दुनिया के रसा तो निर्लेप हो जाता है जिवें सतगुरु जी समझाउंदे राम रस पीआ रे जिहे रस बिसर गए रस और जिहड़े रस सी दूजे रस जिन्ने माया का रस विशियां का रस वकारां का रस वह सारी दे सारी अंदरों दूर हो जाते हैं तो सतगुरु जी वार बारंबार ये फिर समझाते ने बाणी दे विच जदों असी बचन पढ़ते बिखै बन फीका त्याग री सकी है नाम महारस पीओ बिखै बन फीका का भाव बिख का भाव हुंदा है जहर बन का भाव है पानी फीके का भाव बेसवादा भावें असी कहने माया का रस बहुत वधिया निंदिया का रस बहुत वधिया क्योंकि जिथे जिथे बंदे की जिनी जिनी सुरत हुंदी है वो फिर उत्थे दी उत्थे खचत हुंदी जदों उस तो अगला ज्ञान हुंदा है फिर उस तो अगे सुरत उहदी तुरदी है उहनूं फिर पिछला जिहड़ा रस सी उह फिक्का लगन लग पैंदा है इदां जदों दुनिया के रसां दे विच जा रहिंदे आ उन्ना चिर उन्नू उही मिठा रस लगता है हुण देखो शहद की भी मक्खी है दूजी भी मक्खी है शहद की मक्खी नूं रस जिहड़ा उह मिठास दा हुंदा है ते वो कई किलोमीटर सफर तय करके भी वो चाहे कौड़े जेडे फल ने उन्हां ते भी जाके बहिंदी उन्हां चों भी मिठास दे किणके कढ के लैके आउंदी है ते दूजे पासे जेड़ी गंदगी वाली मक्खी है उन्हूं गंदगी चंगी लगती है उहदे लागे भावें होर जो मर्जी जेड़ियां नियामतां जेड़ियां ने उत्थे ओह खिलार दईए जिवें कि बाणी विच असीं बचन पढ़दे ना कि सोना भावें घा दे उत्ते जिन्ना मर्जी खिलार दईए ते गऊआं नूं चरन वास्ते छड्ड दईए ना उत्थे जदों तो वह गऊआं सोने नूं नहीं वेखणगियां उन्हां विच्चों भी घा लभ लभ के खाणगियां जिथों जिथों भी सोने दे विच्चों घा लभदा गया वह घा नूं खाणगियां सोने नूं नहीं खाणगियां बड़े बेअंत उदाहरणां दे के गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने उस शब्द के अंदर दसिया कहण लगे कि इस तरह ही मनमुख की बिरती जिहड़ी है उहदे सामने नाम रूपी सोना कंचन रूपी परमात्मा का नाम भावें किन्ना भी मौजूद है पर उन्हें उहदे विच्चों जिहड़ा है फिर भी घा वर्गे भाव दुनिया के पदार्थ लभ लभ के खाने उस जीव ने क्योंकि उहदा सुभा इस तरह का है ते दूजे पासे शहद की मक्खी वेखो उहदे सामने भावें अक दे फुल भी किड्डे कौड़े जहर वर्गे हुंदे ने उहदे विच्चों भी मिठास दे किणके कढ लैंदी है जाके क्योंकि उहदी बिरती जिहड़ी है वह मिठास दे नाल जुड़ी हुई है उहनूं उह कुड़त्तन दे नाल कोई मतलब नहीं किन्नी भी उहदे विच कुड़त्तन है अक दे विच दूजे कई कौड़े फलां दे विच उहनूं उहदे नाल कोई मतलब नहीं उन्हें उहदे विच्चों मिठास दे किणके क्योंकि उहनूं रस ही जिहड़ा उह मिठास दा हुंदा है इसे तरह दुनियावी बंदा जिहड़ा है वह विशे वकारां रूपी कुड़त्तन नूं मिठा समझ के उहदे नाल जुड़िया रहिंदा है दुनिया के रसां दे नाल जुड़िया रहिंदा है ते उहनां दी बिरती जहर दे नाल ही खचत रहिंदी उत्थे खुश रहिंदे ने जिवें मक्खी गंदगी ते खुश रहिंदी है हुण जिथे गंदगी ते मक्खी बैठी होवे चंदन दा छिड़का करदी है मक्खी उठ जाएगी क्योंकि चंदन दे छिड़का दे नाल उहनूं कोई मतलब नहीं उन्हों गंदगी दे नाल मतलब है उन्हों उत्थों रस आ रहा है इसे तरह ही दुनिया दे विच साडे भी जीवन की कहानी मनुख की इदां दी है जिन्हों दुनिया दे रस आउंदे ने वह फिर जहर दे रसां नूं भी अमृत समझ के उहदे चों खाई जांदा है ते जिहड़े नाम रूपी अमृत दे रस ने
ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਂਗ

सहस्तव गंध विचलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसद चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए ज्योत पाव सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनु अन दिनो मोह आई प्यासा कृपा जल देह नानक सारण को होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परिया मिल साधु खंडल खंडा है

तीर्थ न ले। गावे जोध मां बलसूरा, गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वरपंडा, कर कर रखे तारे।

सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं परसिज्जे।

है। प्रभुगत प्रभा है, सुजुगत सुदा है, सदैव स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तुल सलाम है, सदैव लय काम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओवं आद रूपे अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकमे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुवं सर्वपहागे सुसर्वा अनुरागी

अकृताकृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, न करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणी तृत है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है।

अनेक बिन्यन। जैसे पार बहक खोत आठ पहर महाश्रम पाया बिरख, जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जी आन लागे। से बहु प्रकार हिरोत कर जोड़ नानक दान मांगे हर को कंठ परो।

जब लग शब्द भेद नहीं आया तब लागो काल संताय अनको दर कर्म प्रभु न जान से को दर्श प्यारा गुरु प्रसाद परम पद पाया नानक कहे विचारा पैर महला पहला।